0: 아주 거나 링크레이드가
1: जहाँ मिले आपको तफरी,
2: जहाँ मिले आपको मालूमात,
1: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
2: रेडियो मन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
1: रेडियो मन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: आपका अपना रेडियो, रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

गोल गोल एहन बुलबुल आवाज रेडियो मन 88.4 के रखत है मौत अवेल के जी अर्ज रास के हमदर्द यो जलेबिया बोलो खुश और ईदन को बहिजमत के हाजिर शुभ प्रोग्राम निगड़े माजिगर सरा उम्मीद लरा बोल और ईदन के बिल्कुल चाक जोड़ फिट फाट खुश खुशहाल खुश तबीयत खुश मिजाज वीजा को लमन के खले जिंदगी खले जवन चिदागा बते रवि जिंदगी वफा करे यो जलेबिया खुल और ईदन को सर महाम रेडियो मन कर स्टूडियो ना है हां बिल्कुल बदी निगड़े माजिगर के मंडे वही मंडे सा स्टूडियो गड़े के मुसरा टाइम छा 5:12 और ये प्रोग्राम की मुझे तो से साथ मल करती है ठीक था उस ना 6 बजे भरी हुई प्रोग्राम के आवेदन के हाँ शमूलियत रुसर कवले छे बरखा खिस्सा ले छे काल ले ला रहे सेमेस्ते ला रहे काले पर डायल कवले छे स्टूडियो नंबर 0927-291-292 है सेमेस्टर तक कवले छे मोबाइल के मैसेज क्रिएट ऑप्शन तलो छे कैपिटल के बोले के आरे क्या गना पास पवे के स्पेस अगेना पास तो सीनो मिला की नो غین ہفتوں سے پیغام شیٹ پاس اندر آفزا شانتی خبر ہے موت برسین کا ہے 85-83 منے یعنی کہ 8-5-8-3 منے تو سرطن کی میسیجز پروگرام حساب اگر زو ہاو جناب بالکل پکر رکھی دا برانی موسم دا تیزے تیزے ہوا گانے دا تورے تیارے

से दिल रुबा हटेगा एमएसडी भाई दे डाले हुए रानिया वजीर था शाजिमा वजीर थे हम डाले हुए वही छे अवल दोस्ती ब्याह खबर और ब्याह नफरत जनान सब कमाल ले समाटोल जिंदगी तबाकड़ा मैसेज का बोले यो जहान मरना थैंक यू सो वेरी मच वही छे अस्सलाम वालेकुम अच्छा सही सही गाना बिल्कुल सॉन्ग चिदाई गाना खत्म शो सॉन्ग अच्छे अस्सलाम वालेकुम इतवार बोरस किट शो वाले ने किसी सही बिल्कुल पता बहुशा मैसेज कॉल यो जहान मनना नेक्स्ट मी क्यूटर जहान स्वीट भाई जानी मैं शो नहीं सुन सकती क्योंकि आज हमारे घर में फंक्शन है थोड़ा सा ओके मेरे प्यारे से अनमोल लवली वीआईपी स्वीट भाई जानी गो गुड लक जी ओके जी बिल्कुल तो मैसेज करे था यो जहान मन ना बस इंसान है ना यो हाल नहीं कल कल मसरूफ के दिल है वही आसमा सेफ अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अच्छा 9999 सलूमुना में दरकेज का है माय स्वीट चाचू गुड मॉर्निंग ओके जी गुड कर्मा थैंक यू सो वेरी मच गुड इवनिंग आवर यू शो इज नाइस कोको स्वीट बिल्कुल मेरी तरह भतीजी यो जहान मना दे मैसेज का बोलो थैंक यू सो वेरी मच मगर मच अच्छा आए अरे अरे चाचू आस मसीब ये मंडा ना बनू ना अच्छा भाई कहना चाहिए यहाँ भी बहुत अच्छा मौसम है आसमान पे अच्छा बादल छाए हुए हैं मगर बारिश का इम्कान नहीं है अल्लाह दो की छह बारोन वोश गर्मी जो था आसमसीब यो जहान मनना भाई छिमी क्रिटो जहान फंक्शन ये है हमारे सेकंड चाचू की मंगनी है वाजिब वाह कंग्रेचुलेशन ढेर मुबारक सा कासे चाचू तो ढेर मुबारक सा जी पतो से भी है शो नौ रो वैसे आज सबको इनवाइट है इनवाइटेशन है ओके जी थैंक यू सो वेरी मच क्यूटर जी हाँ नहीं हम बिल्कुल तो से चाचू जी मंगनी देंगे ना और सरा सरा जी चाहू मंग दी चाचा वधू नहीं बेटोलो था डेढ़ डेढ़ जी मुबारक शादे रेडियो अमन खरक जी बिल्कुल स्टाफ तरफ ना यो जहान बिल्कुल मन नहीं कहूँ तो से मिज था इन्वाइटेशन हर उड़ा यानी कि तो से मिज अखबाल यकीनी चिदाई हुआ फैमिली था और तो से खा फैमिली में रहे और तो से चिसरेंगे खुशी दे रोशी वाला फैमिली चाह ना है वैसा स्पेशल किताब अंदर जिदा डाले को और तुझे खुशहाल खुशहाल की जिदा मिश्र शामिल छू

सो क्यूट है एंड अच्छा गाने परमेश पकड़े थे विशेष पकड़ो शाह थैंक यू सो वेरी मच मरहम अफरीदी मैसेज करो आई थिंक तो से फर्स्ट टाइम मैसेज करे थे मोशो के तो सर डेड ऑफ वेलकम हर कला जी सड़ी माशी यो जहान मानना मंडल ऑफ थैंक्स लॉट ऑफ थैंक्स नेक्स्ट भाई जी आसमासी वेलकम रोशी खान दिल रुबा बेवफा अरे चाचू हमारी

0: ओके जी दादा संदर जी दादा दूर डेरा बा गुरु बुनेस कलर जी मिसकाल दिला रे सुखरी जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम
1: छोटे माफ करना
0: अच्छा छोटे माफ दे करना प्रोग्राम के डेरा वेलकम हर कल ले तो सिशियो मैंने
1: थैंक यू सर शेट
0: जी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट अलावा करम दा शोर सर और वे सही सही प्रोग्राम के सर ओडी जी सब रोसर शामिल है अच्छा सही पांच बाईस वे सही शो मोर दला ओके शो के सर उस शामिल है जी शामिल का जी भैया ओके जी वाला जा
1: जी
0: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु काल का वलियो जहान मना थैंक यू सो वेरी मच जी

हाँ जी बिल्कुल सही प्रोग्राम सेवा खबर तरीकी जी और गप से बिल्कुल लगी जी ठीक तरह 7 बजे पर रहे तो बिल्कुल उम्मीद है छे बिल्कुल सुन रहे हैं नवाल दी बिल्कुल ठीक ठाक भी क्या कर रखते या दिन अलावा बनो लकी मरवत जुमेल या दिन अलावा शिमाली जनवी वेरसान चेरते चेरते के रेडियो अमन आवाज़ वरदेशी उम्मीद है जैसे बबई

बिल्कुल कॉल कर लीजिए प्रदीप प्रोग्राम से 0927291292 यानी पीटीसीएल नंबर बने कॉल कर लीजिए 0927291292 बने प्रोग्राम से लाइव कॉल कर लीजिए देने लगा मैसेज हक वाले से मैसेज तरीके हाँ दे रहा सुना मोबाइल के बलोट से राइट या क्रिएट ऑप्शन था चल तक मैसेज लिखे अगे जी तब लोट से लेके बोली के गढ़ खरो से आर एके से कल हम बोली के ब्याब वेर के स्पेस स्पेस में बात खपल नो मखपल इलाके नो ब्याब एसेंड के 8583 बने यानी 85 83 बांधे

बिल्कुल ढेर जबरदस्त मौसम दाई बिल्कुल पासवान बांधे नरई नरई वरिये जी हाँ दी बारान इम्कान हाँ दाई बदवा गाने में बिल्कुल कभी चला तला खेर बारान ओकी जक च गर्मी दर्द रजियो था और चर तक यदि बारान जरूरत भी बस लतला दे आलते पगेजे के बारान चुकम दे ओकी द खेर चुकम दे बारान ओकी बिल्कुल अक्सर प्रोग्राम के हंदा खबर कवि शिकल हां बाहर तई नो बिल्कुल दासी कवि छे पसर बने मतलब हम हां सक्सेस दवई चादर या टोपई ऐसा कैसे गर्मी दौड़ रही होता और दिन लवा स्पेशली अज़ा बिल्कुल खबर है को द माशुमान माशुमान चिकिम दिके नो खेर नन सब हो चुटे हाँ लगी दली दी हो बिया हाँ पचार दागा दो चे गेर जो रीच कम तक दाई के ना द कोर ना बहार था तक दान दे बचार आं गचर तक ये सड़ी जो रीच आर वी नो सही दा कनी मतलब गेर जो रीच तक चकम दे दादे कोर ना बिल्कुल ना दे बचार जकचे द सेहत बखफला बाने ख्याल सड़ाई सती

0: यार बल्ली बल्ला।
1: ओके जी, शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान से सही से सही दीजिए। खुजेफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम, खुजेफा कंपनी शिफा फेस वॉश, द विटामिन सी, खुजेफा कंपनी शिफा तेल, खुजेफा कंपनी शिफा शैम्पू। तो देव खबर या तरी कभी आओ दी तुझे चराव लाइव गपशप लगे जी। चेरी दे दिमाग दुनिया दुखी ना डबी ना।

जी जनाब, नुखुजेफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम स्टॉक है ना? कचेरी दे दे मख हर किस्म सुन सब, हर किस्म मसला भी मख रंग दे तोर दा स्पिना वाले गुड़े दिमख ना दुने दुगीना डबीना तरसीरी खत्म कवल गुड़े नौ रजा का नाम उजेफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम वाला जी इस्तेमाल काम आओ दखपल रंग पे थक स्पिन का जनाब शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान जिंदाबाद दाओ तुसे खुशली कवि दे तुसे मख रंग सफा कवि गर्मे दुने आम दुने डबीना उड़ा स्तर घट या ताजा या जाड़ो खुजेफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम में हमेशा दे पूरा खत्म कवि जरूर ये इस्तेमाल की उददी प्रांड का फायदा उखले का नाम तदीना डेरा फायदा उखले औ मख पे रंग तक स्पिन की हले रो रो रो खुलिया मशद नजर आम औ खना जी चश्मे बदू माशाल्लाह हाकना चे खिस्ता सोवी नहीं नो माशाल्लाह वर्तव्या इशो दगजन जन डेर ज्योत नजीर लगी जी डेर नजीर ये लगी जी नो दा से खलक चे नजीर ये लगी जी आगा चे सदा से खिस्ता ओवी नहीं नो वर्तव्या इचे माशाल्लाह।

शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान, पेशकवी बेहतरीन क्रीम, पुजेफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम, दाव तुसे दश पे लगवे हल्का गोंदे मसाज उगिर की पमखबुंदे औखना जी चिश्फा ते रशीदा खेराव सबुए पुजेफा कंपनी शिफा विटामिन सी फेस वाश बंदू बिनसे बेहतरीन जबरदस्त विटामिन सी फेस वाश डेर जबरदस्त डेर पजड़ पूरे डेर मायारी डेर आला औ डेर कुर्बान कदरदान औ जेर मेहरबान पतु से टूले बुंदे जनाब पुजेफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम जेफा कंपनी शिफा विटामिन सी फेस वाश।

खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 करत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।

0: कल की यादें आज के लम्हे और आने वाले कल की उम्मीद, सबको जोड़ती एक आवाज रेडियो अमन 88.4 सड़क हर वक्त आपके साथ।
1: आपका अपना रेडियो 88.4 नेटवर्क।

हाँ जी बिल्कुल, दिल लगाया था दिलगी के लिए, बिल्कुल तुसवर बदला सॉन्ग और टाइम हो चुका हम दे। हाँ बिल्कुल सर कम दे और सुबह तो भी कहना चाहिए सुमन ठपोती तकरीबन 22 मिनट चुका हम दे आपोती थी प्रोग्राम की रास के हर सर मौजूद दे टिक्शा जी बिल्कुल मैसेज पर बने प्रोग्राम के तुझ चुको मैसेजेस दी दाश मिले भी चाहो दिखाम से ना मैसेजेस करी दी जिक चे मैसेज हाँ चुका हम दे हाँ जरूरी दी नो बिल्कुल दा सॉन्ग चुकुम दे तुसे वर्वदा नो दा सॉन्ग चुकुम दे दुमरा कफी वो